दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर अविनेश। जी हाँ, इस तरह है, अगर क्राइस्टचर्च में आप हो तो आपको तो पता है कि वेदर बहुत ही सुहाना नहीं है। इट्स क्वाइट सेड एंड क्वाइट बेड, और ठंड भी है और बारिश भी हो रही है, लेकिन आई एम श्योर यू आर कीपिंग वार्म। जी हाँ, थोड़ी ठंड भी है, वैसे भी हम कंप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ऑफ कोर्स इन विंटर। तो आप चाय पीजिए, बारा भजिया खाइए खाइए और अपने आप को गर्मी रखिए और एंजॉय करते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लिसनिंग टू अस। और जो लोग हमें फेसबुक में हर वक्त देखते हैं, देन वी विल बी कमिंग ऑन फेसबुक लेटर। थोड़ी देर में हम फेसबुक पर आने वाले हमारे जो गेस्ट आज के हैं, दे आर गेटिंग इन टू द स्टूडियो। जी हाँ, आप हमें सुन रहे हैं फ्रॉम प्लेन से मीडिया मद्रास स्ट्रीट इन क्राइस्टचर्च। तो लोग जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे बातें करते चलेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जिसके विषय में बात करने वाले हैं, इट्स अ बांसुरी, ए टेल ऑफ लव। जी हाँ, जो टिकट्स आर दे सेलिंग फास्ट, जो इवनिंग जो टिकट्स इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट, और जो कुछ टिकट्स बचे हुए उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं, कुछ और जानकारी भी आपको देने वाले हैं, और जो लोग इनसे जुड़े हैं उनसे भी हम बात करते चलेंगे। इट इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय कथाकार चारू जी, जो इज टीचर जो क्राइस्टचर्च में है, इश इज गॉट मेनी स्टूडेंट्स, और दिस इज आई थिंक वन ऑफ दोज रेयर ओकेशंस कि आपको मिलेगा देखने के लिए सच ए प्रोडक्शन, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट। सो इट्स हैपनिंग ऑन द 12th ऑफ सितंबर, इट्स नॉट फार ऑफ। अगर आपने टिकट नहीं लिया, देन इट इज टाइम दैट यू बाय द टिकट्स, क्योंकि कुछ टिकट्स बचे हुए हैं, इफ यू आर लेट देन यू माइट मिस इट। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ सॉन्ग्स भी है जो हम आपको सुनाते चलेंगे, और साथ साथ में कुछ और जो जानकारी हमारे हाथ में लगेंगे उसके विषय में भी हम बताते चलेंगे। कुछ और भी प्रोग्राम है, हरियाली तीज जैसे आपको पता है वो भी आ रही है, जो शालिनी गुप्ता का जो टीम है हर वक्त हर ईयर लाती है। तो दिस टाइम इट्स हैपनिंग ऑन 22nd अगस्त, विच इज़ आई थिंक अ वीक अवे, और देर इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन टेम्पलटन। जी हाँ, टेम्पलटन हॉल विच इज़ वेरी पॉपुलर, जो 64

एक रोड में वहां भी आप जा सकते हो इट्स अ फ्री एंट्री एंड इट्स फ्रॉम 5:30 PM टू 8 PM सो देयर इज द अदर इवेंट जहां पे आप जा सकते हो और भी काफी जो प्रोग्राम हो रहे हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली द नंबर्स आर ग्रोइंग हम और भी जो इवेंट्स देख रहे हैं मेनी प्रोग्राम्स आर हैपनिंग जस्ट कीप इन टच हैदर सफीजी रेडियो पेज पे हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है हम उस पे डाल देते हैं फॉर यू टू नो सो दैट यू डोंट मिस आउट मुझे पता है कि भागदौड़ में काफी बिजी होते हैं पीपल मिस इट एंड देन बाद में आप जो फोटोज वगैरह देखते हो देन आपको पता चलता है कि इवेंट हो गया है एंड यू हैव मिस्ड इट और हम बधाई देने चाहेंगे सभी लोग जो आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मना रहे हैं स्पेशली इंडिया गेनिंग द 80th ईयर हो गया है सो सभी को हम बधाई देंगे आज ही हम सुबह गए थे द सेलिब्रेशन सो ऑर्गेनाइज्ड बाय हितेश जी इट वाज ब्यूटीफुल काफी अच्छा लगा इट वाज इन रिचमंड एंड वी आर होपिंग कि आप सभी लोग हैविंग अ गुड टाइम तो चलो हम आगे बढ़ते हैं सॉन्ग कुछ सुनाते हैं उसके बाद में जैसे हमारे जो गेस्ट जुड़ जाएंगे तो उससे भी हम बात करते चलेंगे

जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फिजी रेडियो। आशा है कि आप मजे ले रहे हो हमारे प्रोग्राम को, और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस फॉर द लास्ट 14 इयर्स। हमें भी आपका साथ बढ़िया लगता है, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। और जैसे हमने शुरू में मेंशन किया है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बांसुरी, अ टेल ऑफ लव। जी हाँ, हम कृष्ण राधा की बात करने वाले हैं, और हमारे साथ कुछ कुछ जो गेस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो मोनिका जी है, एंड वी आर गोइंग टू वेलकम नीलेश एंड अदर्स। जैसे जैसे वो आएंगे हम उनको भी वेलकम करेंगे, और फिर हम जाएंगे फेसबुक लाइव, जहां पे आप हमें देख भी सकोगे और सुन भी सकोगे। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिमेनिंग टिकट्स। जी हाँ, टिकट्स आर गोइंग क्वाइट फास्ट, एंड वी डोंट वांट यू टू मिस इट। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ग्रैब कर ले टिकट अभी, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि बाद में लोगों नो वी कम टू देम एंड दे डिडंट रियलाइज कि ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। सो प्लीज डू लिसन एंड गेट योर टिकट्स व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर। तो चलो हम आपको और एक जो गीत सुनाते हैं, और उसके बाद में होपफुली एवरीबॉडी सी एंड देन वी विल start with our interview.

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई

भरी मटकी दधकी भरी मटकी दधकी भरी मटकी ले जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क।

0: जी हाँ दोस्तों, साथी है चल सफी जी रेडियो में हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। जो लोग हमें हमारे साथ में भी फेसबुक में जुड़े हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने शुरू में मेंशन किया था, जो लोग हमारे साथ फेसबुक में थे कि हमारे पास जो गेस्ट है वो जुड़ रहे हैं, तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि हमारे साथ राकेश इज हियर। वी हैव गॉट नीलेश फ्रॉम लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन, मोनिका, जी हाँ मोनिका को कौन नहीं जानता है, एंड देन वी हैव गॉट प्राची एज वेल। इनसे हम बात करते चलेंगे और चर्चा करेंगे बांसुरी टाइल ऑफ लव, इसके जो पोस्टर आपने हमारे जो पेज है जल सफी जी रेडियो पे देखे होंगे, और इट्स नॉट फार ऑफ, बहुत दूर नहीं, इट्स ओनली 12th of September, और इसका जो डबल सेशन है, एक सेशन इज ऑलरेडी बुक्ड आउट, सो और एक सेशन में कुछ टिकट्स बचे हुए, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। हम आपको बतलाएंगे कैसे आप टिकट्स ले सकते हो, और हम ये भी आपको बतलाने वाले हैं क्यों आपको टिकट्स लेना है, और अगर ये भी हम शायद बताएंगे उसके बाद में कि अगर आप टिकट नहीं लेते हो तो क्या आप मिस करने वाले हो, और हम जो राकेश जी उसको स्वागत करेंगे अपने इस स्टूडियो में। हमने हमारे शो में आने के लिए शुक्रिया, एंड सेम विद नीलेश जी, लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स घर बनाने का आप जो काम करते हो, और वी हैव गॉट मोनिका हु कैन एक ही टाइम पे वो बहुत काम कर लेती है, शी कैन लुक आफ्टर आवर फैमिली, उसके जो दो बच्चे भी है, एंड देन शी कम्स टू अस, हमारे भी कुछ काम रहता है वो भी कर देती है, एंड देन शी परफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी संभाल लेती हैं, और अगर बात हमें कराना तो हमसे बात भी करा लेते हैं, एंड वी हैव गॉट प्राची एज वेल, उससे भी हम बात करते चलेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद राकेश विद यू फर्स्ट। तो अभी तक आपका ये जो शो है कैसे जा रहा है, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान? चारू जी, शी इज हैप्पी विद एवरीथिंग?
1: यस, वी आर रियली हैप्पी, एंड thanks to each and everyone, it's like audience and the person who bought the ticket and to come on the show. I will do a little bit brief about the show, like for the matinee and the evening show.
0: Yeah.
1: In the last Monday, the evening show was sold out. Then uske baad hamare paas bahut sari inquiries aayi ki hame ticket chahiye, hame ticket chahiye. Then uske baad humne thoda sa apna seating arrangement ko और एक्सटेंड किया, और उसमें हमने 20 टिकट्स और एक्सटेंड की। तो दिस मॉर्निंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे मोनिका जी एंड कथाकार टीम ने परफॉर्म किया, और वापस आए तो देखा कि हमारा वो एक्सटेंड जो हमने की थी सीट, वो भी सोल्ड आउट हो चुकी है।
0: वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस सर।
1: तो सभी बधाई के पात्र हैं
0: जी।
1: और मैथनी शो के लिए अभी तक हमारे पास जो फाइनल जो नंबर्स हैं वो 42 सीट्स अभी वैकेंट हैं, होपफुली अभी 26 to 27 डेज अभी हैं, तो जितना जल्दी हो सके, टिकट्स आर सेलिंग टू फास्ट। एंड बांसुरी के लिए अगर थोड़ा मैं आपको और बताऊं कि इसमें क्या है, क्या होने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम से। बांसुरी इज बेसिकली, दिस इज ए फिक्शनल डांस ड्रामा थिएटर प्रोडक्शन, मोर देन 55 परफॉर्मर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, हमारे मोर देन जो भी हमारे कथा का स्कूल्स से स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ हमने कीवी इंडियन थिएटर का कोलैबोरेशन है उस, और गरबा डांस रिदम ग्रुप है, और हमारे लोकल आर्टिस्ट जो कम्युनिटी आर्टिस्ट जो अपना पैशन फॉलो करते हैं, उनके साथ सबको कोलैब करके एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले हमने रिक्वेस्ट किए थी अपने क्रिएटिव डायरेक्टर विष्णु श्री कुमार जी से। तो चारू ने और विष्णु श्री कुमार जी ने पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसके बाद हमने टीम को एक साथ एक जगह पे बुला के और सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया कि अभी डांस है और उसके बाद माइम है और थिएटर है, डायलॉग्स है, इमोशंस है, ड्रामा है, फाइट है, कुछ सस्पेंस भी है, तो वो आप लोग टिकट बुक जिन्होंने कर लिया है तो वो वहाँ पे देखेंगे। थैंक यू। अब बाकी की डिटेल्स कथाकार के बारे में रिक्वेस्ट करूँगा मोनिका जी से।
0: जी हाँ, और इससे पहले मोनिका जी के पास जाए, देन ये आपने उसमें बोला वायलेंस, आई मीन कुछ फाइट्स वगैरह भी है?
1: नहीं, जस्ट वायलेंस लाइक जस्ट टू बी एंटरटेनमेंट पर्पस इज द मोटिव ऑफ दिस वन इज जस्ट नॉट लाइक ए प्लेन शो। सो इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, इसमें डांस है, भरपूर डांस है, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रॉप्स हैं, साथ में बहुत अच्छी डायलॉग्स डिलीवरी भी हैं
0: जी।
1: तो इसीलिए उस फाइट सीन को डायलॉग डिलीवरी के साथ हमने मर्ज करके तो एक बहुत अच्छा इनोवेशन तैयार किया है, तो आप होप ऑडियंस लाइक करेगी।
0: कैन यू नो कि जब वो जो सीन रहेगा उसमें कौन कलाकार है?

0: हमारे इंडियन की भी इंडियन थिएटर के कलाकार भी हैं और कथाकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं. डांस के लिए स्पेशल हमने रिक्वेस्ट किया था गरबा टीम से
1: जी,
0: तो वो भी परफॉर्म कर रहे हैं. बाकी स्टोरी अगर मैं सारी यहाँ बता दूँ
1: तो वही तो हमारा काम होता है ना, ज्यादा से ज्यादा कास्टिंग करना.
0: तो ऑडियंस फिर नहीं मजा आएगा उनको तो, लेकिन स्टिल बहुत सारे क्या कह सकते हैं उसको, मतलब आप बहुत सारे इफेक्ट्स जो देखोगे स्टेज के ऊपर जो आपको नहीं पता लगेंगे
1: जी.
0: आप मजा आएगा आपको
1: जी. और मोनिका जी आप बताइए, आप जब स्कूल डेज में थी ड्रामास वगैरह में पार्ट लेती थी?
2: बहुत
1: जी हाँ,
2: बहुत. आप और उसके शक्ल देख के ही बता सकते हो
1: जी हाँ. और उसके बाद में ऑब्वियसली जब आप क्राइसिस में आई, डिड यू लाइक डू एनी ड्रामास हियर?
2: नहीं मैंने ऑनेस्टली क्राइस्टचर्च में आने के बाद कोई ड्रामा. तो कैसा आपको लग रहा है? मैं बहुत एक्टिव थी तो यहाँ कथाकार ज्वाइन करने के बाद इट हैज गिवन मी अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी कि मैं स्कूल का पार्ट होके शोज में पार्टिसिपेट कर सकूं. और ये जो बांसुरी, जैसे राकेश जी ने आपको बताया बांसुरी आ रहा है, आप जैसे इसके बारे में पूछ रहे थे, तो ये कथाकार्स और कीवी इंडियन थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर, और बहुत सारे लोग हैं इसमें, सिर्फ दो ही टीम्स नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कोलैब किया है. और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि दिस इज अ राधा कृष्ण की स्टोरी, सभी ने सुनी हुई है, आप सुनाते भी हैं, सुनते भी हैं अलग अलग तरीके से. दिस इज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट, तो वो कैसे इस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आप थिएटर में देखोगे, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, एक्शन. So, सारे एलिमेंट्स है इसके अंदर.
1: No, definitely, I'm pretty excited with the fight scene. रखे जी, जरूर हम देखने आएंगे. और before we talk to Prachi, तो मोनिका, how does Mayank feel? पहले मुझे पता है कि आप शायरी बोलना शुरू कर देती थी, अभी आप शायद डायलॉग बोलना शुरू कर देती होगी.
2: नहीं, शायरी मेरा अभी भी मेरा पैशन है, पर मैंने अभी उसको सेव करके रखा
1: है बात के लिए. मयंक, आप सुनते रहिए. सही है जी. प्राची, आप बताइए, आपका किरदार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन सा है, आप क्या संभाल रही हो?
3: थैंक यू विनेशी फॉर हैविंग मी. मैं प्रेडोमिनेंटली एडमिन साइड देख रही हूँ, मतलब कि ऑल आर स्पॉन्सर्स, उनके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना, उनके साथ कम्युनिकेशन यू नो ओपन रखना, कीप फॉलोइंग देम अप. वो नीलेश जी बताएंगे कितना उनको मैंने बैजर किया है, ऐसे आपका भेजो, आपका सिग्नेचर अभी नहीं मिला, अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बट नो इट्स बीन रियली नाइस. और ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स हैव बीन रियली अमेजिंग. So, really, really looking forward to meet everybody. Aaj to Nilesh ji se mulaqat hogi, but I'm looking forward to meeting all the others as well.
1: Ji haan, aur Prachi ji, kisi ne kis sponsor mein abhi tak apna jo deposit nahi pay kiya hai?
3: Everybody's
1: fine.
3: Everybody's good.
1: Okay.
3: Abhi mujhe unse sabko milna bhi hai na us din, to I have to save face.
1: Ji haan,
3: everybody's been doing really well.
1: Ji haan, aur maybe you're doing a fantastic job.
3: thank you.
1: Rakesh, you've got a good person there who makes you business. One of the main hum kahenge ingredient to this, because unless you have finance, it's very difficult to do anything, because sabhi cheezon mein paise lagte hai, hiring a theater, and there's so many jo overhead cost rehte hai, so we do know that. And we've got here Nilesh, who is from Limelight Construction. And thank you Nilesh, and thank you to all the sponsors, because bina sponsors ke to we won't be even having this discussion. So thank you for doing that. Aap bataiye ki abhi aapka jo market kaise chal raha hai construction wise.
4: Firstly, thank you to Kathakars and the event organizers, Charuji and Rakeshji, for allowing us to be part of the event. And it's our pleasure to support them in any shape and form we can. It's good to see our culture being replicated in different forms, collaborating with local groups. So it'll be exciting. We are super excited to see the show and to show the young generation that what our culture is all about. So we are very privileged to be part of the organization and be part of the whole event. Coming to construction, we are doing pretty good at the moment. Hum abhi turnkey packages bhi kar rahe, women land packages, and anywhere in Canterbury, Ravenswood se leke Ashburton tak, kisi ko bhi koi ghar banana ho, chahe design and build ho ya turnkey ho, or even koi development karwana ho, reach out kariyega, zarur hum unhe madad karenge. Apart from that, business is going pretty steady and busy.
1: जी हाँ, और जैसे हम इवन सुन रहे थे बिल्डिंग प्राइसेस, मटेरियल प्राइसेस इज गोइंग अप, इज दैट ट्रू?
4: यस दैट इज ट्रू.
1: सिर्फ हमें बता दिया जाता है जस्ट टू हाइक द प्राइसेस?
4: नहीं, डेफिनेटली प्राइसेस आर गोइंग अप.

0: इन्फ्लेशन के कारण और प्लस इवन रिसेंटली जो वॉर हुआ था उसके कारण और फॉलो ऑन इफेक्ट धीमे धीमे हमें आता है
1: जी.
0: और ऑब्वियसली फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं
1: जी.
0: ओवरऑल थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ेगा ही एज टाइम गोस बाय.
1: जी हाँ सर. और जैसे आपने बोला कि आप डिजाइन एंड बिल्ड भी करते हैं, दैट मींस अगर किसी के पास ऑलरेडी लैंड है देन आप बिल्ड भी कर सकते हैं. व्हाट अबाउट रेनोवेशन, आर यू डूइंग दैट? बिकॉज अभी हमने ये भी नोटिस किया है कि पीपल आर बीइंग अ बिट पजल्ड कि हम हमारे पास ऑलरेडी घर है हम क्यों बेचे, बिकॉज मार्केट भी डाउन है. मे बी यू नो पीपल हैव आर नाउ स्टार्टिंग टू हैव दोज सेकंड थॉट्स. और काफी लोग ये भी सोचते हैं कि चलो हम किचन नया कर देते हैं या बाथरूम नया कर दिया, इट इज गुड स्पेस भी हमारे पास है. डू यू डू दोस
0: रेनोवेशन? तो नहीं करते, बट अगर कोई बड़ा एक्सटेंशन हो डेफिनेटली वी कैन लुक इनटू इट. किसी को एक एक्स्ट्रा बेडरूम ऐड करना है या घर को और बड़ा करना है उस डायरेक्शन में हम देख सकते हैं. मोस्टली हम न्यू बिल्ड्स में देखते हैं और आर्किटेक्चरल हाउसेस एंड इवन टाउन हाउसेस.
1: Yeah. And what about granny flats? Is it something that your company can do
0: as well?
1: Piso to nahi aata
0: hai
1: and consent wagera bhi bahut jhanjhat nahi hota. So if they have space then you can
0: 100%
1: help them with that as well.
0: 100%.
1: So there you go, we've got Nilesh from Limelight Construction who can speak our language.
0: Yes.
1: Yeah, which will make things very much easier. To agar aap hame sun rahe ho aur agar aap ghar ki koi bhi pareshani ho ya questions hai, I guess aap log consultation fees to nahi lete ho na?
0: Na.
1: जी हाँ. सो देयर यू गो. सो कंडीशन भी नहीं रहेगा. मैंने कहा जेन्युइन क्वेश्चन हमें पूछना पड़ता है. जी हाँ राकेश. तो कैन यू एक्सप्लेन ये जो दो शोज है उसका टाइमिंग क्या है? व्हाट यू कॉल दैट मैटिनी? सो इज इट लाइक मॉर्निंग या
2: जो मैटिनी शो है वो 2 बजे स्टार्ट होगा
1: जी,
2: और जो इवनिंग शो है वो 6:30 बजे स्टार्ट होगा
1: जी.
2: 50 मिनट्स का फर्स्ट सेक्शन है, देन 20 मिनट्स का ब्रेक है, देन 50 मिनट का देन सेकंड सेक्शन है. तो अगर टोटल 2 आवर्स शो होगा.
1: यो कोई 2 बजे आता है देन दे हैव टू बी देयर लाइक 4 तक फिनिश हो जाना चाहिए ना, जस्ट 2 आवर्स.
2: देन आफ्टर दैट द फोटो सेशन, मीट एंड ग्रीट आउटसाइड देयर एंड विद द पार्टिसिपेंट्स, परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट.
1: तो दोनों शो में रहेगा या?
2: दोनों में रहेगा.
1: दोनों
2: में रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा.
1: जी हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज देन यू विल बी सेलिब्रेटिंग बिकॉज इट्स नॉट इजी टास्क. और इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद में ऑब्वियसली यू विल बी सुपर एक्साइटेड.
2: फोटो तो बनती है.
1: जी हाँ exactly. And we will just say congratulations in advance because selling tickets or itna big hai, and then like 42 is I'm sure it will just disappear even after this interview. I think you'll receive more feedback or wo bhi big jayega. So I can see that happening. Aur Monica, obviously you are up to enjoy career rahe ho iske saath mein. Aap bataiye ki what have been your learning experience which must have come out of this one?
3: तो पहले मैं विनेश जी, जितने भी आपके व्यूअर्स हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको कथाकार्स के बारे में, बिकॉज आई रिप्रेजेंट बांसुरी तो जो हम कर ही रहे हैं पर आई रिप्रेजेंट कथाकार्स. और कथाकार्स एक वेल नोन आई कैन से नाउ कि अच्छा खासा इस डांस स्कूल का नाम है, ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ चारू जिन्होंने ये स्कूल एस्टेब्लिश किया. एंड शी इज प्रोफेशनली ट्रेंड, शी इज डन हर मास्टर्स इन कथक और वो यहाँ पर कथक सिखा रही हैं. एंड देयर इज नो एज बार, आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े, जैसे मैं भी सीख रही हूँ तो आप यहाँ पर आकर आप कथक सीख सकते हैं. कथक इज लाइक इट्स एंशिएंट आर्ट फॉर्म, ये आज का या कुछ टाइम पहले का नहीं है. और कथाकार्स का नाम भी वहीं से आया है जो कथा सुनाते हैं. तो ये हमारा कथाकार्स है. यहाँ पे बहुत सारे बैचेस हैं और अगर हमें जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आपके पास बच्चे हैं या कोई भी जिसको इंटरेस्ट है या जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो वो कथाकार्स में आकर सीख सकते हैं. और मुझे कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं स्कूल में कथक सीखती थी एंड देन बीच में छोड़ दिया उसको एंड देन मूव स्कूल्स, मूव कॉलेजेस एंड देन यू नो लाइफ गेट्स इनटू इट्स प्लेस. तो अब मुझे जाकर वापस ये मौका मिला है कि मैं वापस कथक सीखूं. आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. हम टेक्निकल पीसेस तो सीखते ही हैं, उसके साथ साथ हम टीम में कैसे काम करना है, डिसिप्लिन कैसे होना है. हर किसी का एक अपना पैशन होता है आर्ट को फॉलो करने का और वो जब हम सब लोग साथ लोग बैठ के शेयर करते हैं, इट जस्ट गिव्स यू अनदर पर्सपेक्टिव.
1: वही डिफरेंस है कि इट्स नॉट लाइक जैसे नानी हमें कहानी सुनाती थी, बट दिस इज मोर लाइक ऑडियो विजुअल. आप देखते हो जिस तरह, एंड देयर सो मेनी थिंग्स टू इट. यू नो अगर आप देखोगे देन आई एम श्योर यू विल गेट इमेंस इनटू इट बिकॉज दे विल बी सेइंग सो मेनी थिंग्स विद द आईज एंड हैंड मूवमेंट्स और वगैरह वगैरह होता है. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, जैसे भी आज हम सुबह विटनेस किया व्हेन वी वर एट द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो चलो हम प्राची की ओर चलते हैं ना. ऑफ कोर्स वो एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन

0: वही होगा कि लेट्स टॉक अबाउट, अगर लोगों को आना है तो हम यहाँ कहाँ पे हमें आना है?
1: सो द शो इज एट ब्लैक बॉक्स थिएटर, वो टू रॉलस्टन एवेन्यू,
2: जस्ट ऑपोजिट द बोटानिकल गार्डन,
1: ऑपोजिट, या ऑपोजिट द बोटानिकल गार्डन्स. और देर आर गोइंग टू बी फूड स्टॉल्स एज वेल. तो आपको यू डोंट हैव टू वरी इतना देर शो चलेगा तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज वो मिलेगा. देर इज गोइंग टू बी सम अमेजिंग फूड एज वेल. और या वी आर होपिंग टू हैव इवन पीपल वॉक इन, परहैप्स अगर कुछ बचते हैं टिकट्स, जो होने वाला नहीं है, बट फिर भी अगर एक यू नो कोई कुछ बचा हुआ है तो यू माइट बी एबल टू गेट इन एट द डोर एज वेल, बट चांसेस बहुत कम है. सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ योर लिसनर्स, अभी जाके बुक करवा लो वरना यू आर गोइंग टू मिस आउट.
0: जी हाँ, और अगर आप किसी को यहाँ पे पहचानते हो, अगर फेस, तो दैट्स इजी, यू कैन टेक्स्ट देम, कॉल देम, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इट विल बी वेरी हार्ड बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल बी बिजी एंड रनिंग अराउंड. तो शायद हमें राकेश का नंबर देना पड़ेगा.
2: मैं थोड़ा उसको ब्रीफ कर देता हूँ. अगर कोई ये टिकट के लिए चाह रहा है तो हमारा कथाकार का पेज है, उसके बायो में लिंक है. और वैसे भी अभी विनेश जी ने इतना हमारा पेज स्प्रेड आउट कर दिया सोशल मीडिया पे, तो आप किसी भी पेज पे जाके आप लिंक क्लिक कर सकते हैं कथाकार के पेज से, तो आपको इजीली गो आउट द टिकट सेंटर होते हैं.
0: जी हाँ, और अगर आप हमें कॉल करोगे तो हम वही बताएंगे हमारे पास टिकट से, बट हम देंगे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली आई विल बी कमिंग टू द शो माई सेल्फ, आई वुडंट मिस इट. क्योंकि जो लोग क्राइस्टचर्च में, उन्हें अच्छी तरह पता है, जो लोग नहीं है तो उसको हम बता देंगे कि दिस काइंड ऑफ शोज डजंट हैपन एवरी डे. शायद ऑकलैंड में होता होगा बट हमारे यहाँ नहीं होता है. और पीपल हु आर इन एज पैटर्न या जो और ज़्यादा जो दूर है क्राइस्टचर्च या मेन सिटी से, उनको ये भी पता होगा कि इट्स हार्डली हैपन्स इन द एरियाज. सो वी आर अ बिट फॉर्चुनेट देन देम. और इस तरह के शोज बहुत मुश्किल से मिलता है. अगर आपके पास बच्चे हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा टाइम है कि आप जाकर विटनेस करें, देखें, एंड देट कुड बी समथिंग दैट योर चिल्ड्रन माइट गेट अट्रैक्टेड टू. एंड इट्स एन आर्ट. और अगर न्यूजीलैंड में देखा जाए, आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन जो पढ़ाई के लिए भी होती है. एंड ऑफकोर्स वी हैव गॉट दिस यूनिट, बट एट द सेम टाइम आर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है. आप कुछ भी देख लो, इवन अगर टाटू देखोगे तो दैट्स अनदर थिंग जो आपको काफ़ी कॉमनली आपको मिलेगा. वेयर इज अगर हम इंडिया में देखेंगे, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी, कितना देखोगे, फिजी में कम है, बट अगर हम अपने जो कल्चर में जाएंगे, इफ़ यू गो बैक इन टू आवर हिस्ट्री, तो उसमें टाटू हेड स्पॉट एक जगह था. लोग यू नो कुछ कुछ हम कहेंगे कुछ कुछ कल्चर में बहुत प्रेवलेंट था, बट धीरे धीरे कुछ समय में शायद खत्म हो गया होगा, बिकॉज इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग एट वन टाइम, बट इट इज कमिंग बैक. तो सभी कुछ रिलेटेड है. इफ़ यू गोइंग टू हिस्ट्री यू फाइंड अ लॉट. और आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज लर्निंग प्लेसेस जहाँ पे आप जाओगे, सीखोगे, इट्स आर्ट एंड ड्रामा. और आगे चल के आई थिंक न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बाउंस बैक इन टू आर्ट एंड कल्चर. और अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए, जैसे बॉलीवुड है इंडिया में, उसी तरह न्यूजीलैंड में देर आर मूवीज बींग बाई ड्रामा की भी अपना जगह. एंड इट इज़ जस्ट गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर, मोर नंबर्स, बिकॉज ऑफकोर्स इंडियंस आ रहे हैं. और जब इंडियंस कहीं पहुँच जाते हैं देन वो ये सब शुरू भी कर देते हैं, फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है. सो इट इज़ बाउंड टू हैपन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. इट्स गुड न्यूज़ फॉर नीलेश, आपके लिए भी है. There's more people coming and of course more business for you. और काफ़ी लोग आपके पास जो inquiries करेंगे, so that you can build more homes. और काफ़ी अच्छी बात है कि you are quite spread out. आपका showroom है?
2: हाँ, हमारा अभी शो होम अंडर कंस्ट्रक्शन है. हम प्रेबल्टन में हैम्पटन्स ग्रू में शो होम बनाने वाले हैं. सो बाई एंड ऑफ नवम्बर तैयार हो जाएगा. आप आके देख सकते हैं हमारा वर्कमैनशिप और फिनिश क्वालिटी. सो then you can make a decision.
0: Yeah. And are you going to encourage people to buy into Prebleton? Because I think Rolston काफी भर चुका है. क्या हम बोल सकते हैं लोगों की अब थोड़ा Prebleton की तरफ ध्यान दे?
2: Yeah, Prebleton में काफी opportunities है. काफी sections आ रहे हैं. Lincoln में भी है. On top of it, अपना Northern Canterbury side भी opportunities काफी है. काफी नए subdivisions आ रहे हैं Belfast में और Kaipoi में और Rangiora में. So depending on आपके lifestyle, आपका work कहाँ पे है, आप नए घर बनाने की सोच सकते हो.
0: जी हाँ, सो इफ यू हैव एनी ऑफ दोज क्वेश्चंस अगर है तो यू कैन ऑलवेज चेक विद नीलेश. और काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि दे बाय द लैंड एंड देन कम टू यू, देन ऑफकोर्स देन आपको बताते हैं नहीं नहीं थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट होगा बिकॉज इसका जो जो काउंसिल का regulations काफी tight है particular land को लेकर. So would it be any wise अगर वो लोग आपसे पहले बात करें land लेने से पहले, can they do that?
2: 100% आप जितना जल्दी हमें engage करोगे उतना बढ़िया रहेगा. हम आपको guide सर कर सकते हैं कि कौन से land buy करनी चाहिए और land के
0: size क्या होनी चाहिए,
2: size क्या होनी चाहिए और TC1 है या TC2 land है उसके basis पे क्या impact पड़ सकता है आपके bill cost में. और कोई कोई जगह पे आपको sewer pump भी लगाना पड़ता है तो वो भी एक extra cost लग जाता है.

0: पहले एंगेज करिए बिफोर बाइंग द लैंड, एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट करने के बाद एटलीस्ट एंगेज करिए एंड देन गो एंड कमिट एंड मेक द डिपॉजिट फॉर द लैंड.
1: जी हाँ, एंड वुड यू गेट ऑफेंडेड अगर कोई आपके पास आता और बोलता नहीं नहीं हमें पर्टिकुलर रूम इस डायरेक्शन में चाहिए वास्तु के हिसाब से?
0: हम काफ़ी सारे घर वास्तु के हिसाब से बनाते हैं और हम उसको इजीली अकोमोडेट भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड लैंड का शेप और ओरिएंटेशन सही हो. हम अभी ऑलरेडी दो घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो हमने वास्तु के बेसिस पे ही बनाए हुए हैं. सो वी हैव द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज के हम उसके बेसिस पे भी आप गाइडेंस दे सकते हैं. अगेन अब जब वास्तु की बात कर रहे हो तो लोग जो साउथ इंडियन है वो थोड़ा डिफरेंट मानते हैं, जो नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया डिफरेंट मानते हैं और दिस वी लिव इन सदर्न हेमस्फीयर तो उसका भी थोड़ा अलग एंगल होता है. सो उस सब जानकारी के लिए आप हमें रीच आउट करिए, हम डेफिनेटली डिस्कस करके आपको गाइड कर सकते हैं.
1: जी हाँ, थैंक यू सो मच. सो देयर यू गो, अगर आपके ऐसा कुछ इश्यूज है कुछ कंसीडर करना चाहते हो देन जैसे हमने बोला है कि नीलेश स्पीक्स आवर लैंग्वेज, इट विल रिक्वायर डीसी फॉर यू टू टॉक टू हिम. और राकेश जी, आपके पास आपने काफ़ी जो लिख के काफ़ी इन्फॉर्मेशन लाई हुई, आई एम श्योर यू वॉन्ट टू शेयर विद अस. और आप शुरू कीजिए, क्या हमने मिस कर दिया?
2: नहीं, वो जो आप बता रहे हो लिस्ट, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिनके बिना ये पूरा प्रोजेक्ट पूरी प्रोडक्शन इनकम्प्लीट है. इन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है. तो मैं स्पॉन्सर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं. सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू नीलेश जी एंड गुरिंदर जी फ्रॉम लाइमलाइट इंस्ट्रक्शन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया. सबसे पहले योगेश भार्गवा जी फ्रॉम हारकोट से, हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं और हैं फ्यूचर फर्नीचर विल्सन जो है वहाँ से, और खो पावर्ड बाय लाइमलाइट कंस्ट्रक्शन, स्पेशल थैंक्स मैं. एंड प्लेटिनम स्पॉन्सर पे हमारे पास मारुति फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से मयंक सूद जी जो कि हमें फर्स्ट डे से सपोर्ट हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ आज ज्वाइन भी किया, थैंक यू वेरी मच. जीलैंड अमेरिकेशन से यितेश शर्मा जी एंड नोवल्टी सिंडम. तो और उसके बाद हमारे पास गोल्ड स्पॉन्सर हैं इशप्रीत सिंह जी दात इंश्योरेंस से. आज उनके एक मेंबर ने आना था लेकिन माइट बी देयर सिक, तो दे वो नहीं आ पाए, बट थैंक यू वेरी मच. देन है सिल्वर स्पॉन्सर जिसमें है ग्लोलिन ब्यूटी एंड ए टू जेड अकाउंटिंग लिमिटेड, रुकमणी सिल्क्स, वाईमार्क ग्रोसरी स्टोर, बैडी स्पेस, ब्लोजम डेंटल एंड सेवे कैफे. तो बाकी जो हमारे स्पोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं और सोशल मीडिया पार्टनर है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैम से, सूद से प्लीज आप थोड़ा दीजिए.
3: हाँ जी, थैंक यू राकेश. जैसा हम सभी यहाँ पर पहले भी बात कर चुके हैं कि स्पॉन्सर्स के बिना हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके नहीं आ सकते हैं, तो जिनका नाम राकेश जी, थैंक यू सो मच. और आपके चैनल के थ्रू मैं जो हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी. हमारे साथ हैं आरोहा इवेंट्स, प्रिंट प्रो जो आप ये ब्यूटीफुल सा पोस्टर देख रहे हैं, हमारे पास है जिफिन जॉय फोटोग्राफी, ध्रुमल देसाई फोटोग्राफी एंड फिल्म्स, और हम अपने सोशल मीडिया पार्टनर्स को नहीं भूल सकते, दोज हैव स्प्रेड द वर्ड और सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए बांसुरी के बारे में. वी हैव ग्रो विद अमित, इंडियन न्यूज लिंक, जलसा फिजी रेडियो, थैंक यू सो मच विनेश जी. हमारे पास है नमस्ते भारत, कीवी टाइम्स एंड रेडियो साडेवाला. जो हमारा इवेंट, जो हमारा वो है थिएटर है जिसको सजाने का बीड़ा उठाया है फैन फेयर वेडिंग एंड इवेंट प्लानर्स ने, थैंक यू सिल्की हमारे शो को और सुंदर बनाने के लिए. और हेयर एंड मेकअप पार्टनर हमारे हैं हेयर एंड मेकअप बाय रिचा, और जैसा अभी प्राची जी ने आपको बताया कि वहाँ पर खाना भी होगा, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू MBA फ्यूजन जो हमारे फूड पार्टनर्स हैं, जो हमको बहुत ही हमारा पेट भरा रखेंगे ताकि हम इंजॉय कर सके.
1: जी हाँ, थैंक यू सो मच मोनिका एंड राकेश. एंड प्राची जी, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉल्स, इज अपार्ट फ्रॉम फूड स्टॉल्स और भी कुछ स्टॉल वगैरह रहेगा?
4: नो, बाकी स्टॉल्स जो है वो इट वॉन्ट बी स्टॉल्स पर से, लेकिन हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन सबके बैनर्स रहेंगे और दे माइट ऑल्सो स्टैंड बाय द बैनर्स नाउ एंड अगेन इन द ब्रेक्स टू यू नो इफ अगर किसी को कुछ उनसे बात करनी है, कुछ पूछना है, तो दे माइट बी एबल टू डू दैट. और आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन वन अदर थिंग, द लैंग्वेज फॉर दिस शो इज देर इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तो डू ब्रिंग योर नॉन इंडियन फ्रेंड्स एज वेल, इनकरेज देम टू कम एंड सी वॉट दिस इज, बिकॉज म्यूजिक नोज नो बैरियर्स. No, so language barrier nahi hoti music ki, dance ki, there's no language barrier there. So bring them along, they will also definitely enjoy. So spread the word, apne friends ko leke aao, colleagues ko leke aao, and we hope to see everybody there.

0: Thank you, Vinishji.
1: Thank you. And so we will be finishing off in say another 5 minutes or so. Aapko shayari bolni hai, Monika ji.
2: Mujhe shayari nahi bolni hai. Humne sari teams aur sponsors aur sabhi admin team, hamari Prachi ji aur Rakesh ji dekh rahe hain. Sabka humne thank you kiya. Par main yahan pe kathakars ki taraf se ek aur team ka mention karna chahungi. Garba team ka to Rakesh ji ne bataya ki jo hamare sath community ke jo people from everyday walk of life jinhone hame join kiya hai aur Garba group jo hamare sath hai. Kathakars ki तरफ से हमारे पास जो टीम है जो बैक पीछे स्टेज बैक ऑफ द स्टेज पूरे टाइम जो काम कर रही है उस टीम का नाम है सप्त स्वर. तो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने और क्या सीखा, तो कथाकार्स के अंदर सारी टीम को मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं लोग को कैसे काम करना है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ये जब हम ऐसे प्रोडक्शंस के साथ जुड़ते हैं या ऐसे स्कूल के साथ जुड़ते हैं तो वी लर्न टीम वर्क एंड ऑल दैट स्टफ. तो हमारी जो टीम है उसका नाम है सप्त स्वर और ये सारे ही कथाकार्स के ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सीखने के साथ साथ ये बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम मैनेज कर रहे हैं, मेकअप मैनेज कर रहे हैं, मतलब सब चीजें एक डॉट से दूसरी डॉट को जोड़ रहे हैं. तो मैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि अगर वो ये नहीं करते तो इट कम्स ऑन जस्ट वन पर्सन टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. तो ये हमारा पूरा टीम वर्क है जो इट ऑल हैज कम टुगेदर और इसको करने में बहुत मेहनत लगती है. तो आप सभी लोग, हमारा इवनिंग जो शो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, यही, और हमारा जो आफ्टरनून शो है वो 60% जा चुका है, थोड़ी सी सीट्स बची हैं. अगर आपने प्लीज नहीं किया है बुक तो करिए आज ही, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े दिन में ये भी बुक आउट हो जाएगा और फिर हम किसी को भी अकोमोडेट करने के लिए हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम कहें कि आप नहीं देख सकते, क्योंकि हम एज एन आर्टिस्ट और सारी टीम आपको एक अच्छा शो दिखाना चाहते हैं.
1: जी डेफिनेटली, और जैसे आपने बोला है कि जब टीम वर्क होती है देन यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. और एक चीज़ हम और भी सीखते हैं, अगर आप ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में रहते हो जैसे भी हम रेडियो पे आते हैं, एक चीज़ हमने खुद सीखा है हमारी ज़िंदगी में वो है डिसिप्लिन. बिकॉज अगर हम नहीं आएंगे फिर भी ये यही टाइम शुरू हो जाता है और इसी टाइम फिनिश होता है, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन. मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ कि इट्स लाइक एन एरोप्लेन. तो मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं तुमने तो कभी एरोप्लेन चलाया, तुम घूमे कैसे कर सकते हो? तो इट्स लाइक दैट, बिकॉज आपको समय पर होना चाहिए एंड दैट जस्ट मीन्स कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, समय पे आना पड़ता है बिकॉज इट स्टार्ट्स एट अ सर्टेन टाइम और यहाँ पे जो कुछ भी हमें जल्दी जल्दी मैनेज करना पड़ता है. सो इन व्हेन यू आर इन ए ग्रुप लाइक दैट, जब आप अकेले परफॉर्म करते हैं अगर कुछ छूट जाता है यू कैन कैच अप बिकॉज नो वन एल्स विल नो. और एंड इफ यू आर डूइंग अ लाइव शो ईजी हो जाता है बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट प्ले है वो लोग कुछ मैनेज कर लेंगे. बट दिस काइंड ऑफ शोज इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम गेसिंग इट इज इट ऑल काइंड ऑफ रिकॉर्डेड कि वहीं पे वो इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा. आप कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं, गलती नहीं कर पाओगे, सो चलते रहेगा.
3: उसके बाद आपको सिर्फ कर्टन क्लोज होंगे या इंटरवल.
1: जी हाँ, सो जितने भी ग्रुप्स हैं यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा प्रेशर पे सभी लोग रहेंगे और खास करके जो बच्चे, आई थिंक इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल. जैसे आज भी हम देख रहे थे दे वे किड्स परफॉर्मिंग, सो इट्स सो ब्यूटीफुल कि किस तरह all will be, you know, it comes to discipline as well. Yes. Because aapko fir sabhi kuch bhula kar wahi pe concentrate karna hai and it's beautiful and I'm sure humne jo charu ko pehli baar dekhe honge shayad humne jab main parliament house gaya hoga tab shayad humne usko perform karte dekha, but then usko kuch baar yahan bhi dekha tha. Kafi din baad mujhe pata chala ki actually she shifted. She came to Christchurch and mujhe acha laga, maine bola chalo koi artist aur bhi aaya hai and now that you are bringing this show for Christchurch it means a lot. हमारे क्राइशिश के लिए और खास करके मोनिका विल अग्री, वी हैव सो मेनी पीपल ओवर हियर. यू नो हम कभी कभी कहते हैं ना कि काफ़ी लोग जो भूखे होते हैं दोज काइंड ऑफ थिंग, जो आर्टिस्ट होते हैं दे आर वांटिंग दोज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो आप लोगों को लाने के लिए वी विल से थैंक यू. कथाकार यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब और हम काफ़ी बार आप लोगों को परफॉर्म भी करते देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है एंड ऑल द बेस्ट. टिकट्स तो कुछ ही बचे, आई एम श्योर इट विल बी सोल्ड आउट. तो हमारे पास अब मे बी 3 मिनट्स कुछ बचा, तो जाते जाते
2: आप बोल रहे थे आपने चारू जी को पार्लियामेंट हाउस में देखा था, तो उनका स्कूल फंगरी और ऑक्सफोर्ड में भी शी वाज टीचिंग देयर. तो ऑल द वे दैट जर्नी शी स्टार्टेड ओवर देयर इट्स लैंडेड इन क्राइस्टचर्च एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हर हियर.
1: जी डेफिनेटली, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत बच्चे हैं, इन द नंबर्स आर ग्रोइंग बिकॉज एक टाइम था जब क्राइस्टचर्च वाज एब्जॉर्बिंग मोस्ट, जो इंटरनल माइग्रेंट माइग्रेशन हो रहा था क्राइस्टचर्च वाज एब्जॉर्बिंग द मोस्ट people from other districts. तो many people are here, काफ़ी Indians है और आज भी हम देख रहे थे काफ़ी uni students, they were at the Independence Day and we could feel the numbers are coming and of course we've got FTI now in more Indian

0: are coming from India. So आप लोगों का जो ये क्लास है इज गोइंग टू बी वेरी मीनिंगफुल बिकॉज जो बच्चे हैं इवन जैसे मोनिका जी बोल रहे हैं कि एडल्ट भी हो सकते हैं दिस इज वन प्लेस दे कैन कम और लोग यू नो दे आर गोइंग थ्रू ऑल दोज काइंड ऑफ इश्यूज तो रहता है टेंशन रहता है जो कुछ कर रहे हो बट आर्ट कैन डू डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस जी हाँ बिकॉज ये सब करने के बाद में आप घर जाते होंगे देन आपको लड़ने का मन नहीं करता होगा
1: जी हाँ मेरी मेंटल सैनिटी के लिए ये बात जरूरी है
0: जी हाँ जाते जाते मैं गिव अ फ्यू सेकंड्स
2: जाते जाते मैं थैंक यू वेरी मच विनेश जी आपका और थैंक यू क्राइस्टचर्च कि जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया फ्रॉम द फर्स्ट डे सेकेंड शो जो सोल्ड आउट हो चुका है वो आपकी वजह से ही है और जो मैथनी शो है वो भी ऑलमोस्ट एज पे ही है 40 सीट्स रह गई हैं तो बाकी सभी स्पॉन्सर्स का थैंक यू बच्चों का थैंक यू परफॉर्मर्स का थैंक यू उनके पेरेंट्स का थैंक यू अगर कोई रह गया तो माफ़ी कर देना थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन
0: जी हाँ नीलेश जी
3: थैंक यू कथकस फॉर अलाउिंग अस टू बी पार्ट ऑफ द इवेंट हम सुपर एक्साइटेड हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए एंड होपफुली एवरीबडी एंजॉयस एंड प्लीज बाय द टिकट्स एज सून एज पॉसिबल
0: थैंक यू मोनिका जी
1: मैं आपको चार लाइनें पोएट्री की जरूर सुना के
0: जाऊंगी
1: ये बहुत पुरानी पोएम है पर ये कृष्ण से जुड़ी हुई है और उसमें बांसुरी है तो मैं उसको जरूर मेंशन करूंगी कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे तो मैं भी उस पर बैठ कन्हे या बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे तुम बांसुरी दो पैसे वाली और किसी तरह नीचे होता हो जाती यह कदम की डाली तो इसी लाइनों के साथ मैं आप सबको इनवाइट करूंगी हमारे प्रोडक्शन के लिए और प्लीज आइए जल्दी से टिकट बुक करिए नहीं तो ये चली जाने वाली है
0: जी प्राची जी
4: अब इतना अच्छा सब सुनने के बाद आई कैन से मच लेकिन थैंक यू सो मच विनेश जी फॉर हैविंग अस टुडे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट शो बीइंग अ सेल आउट एज वेल तो जरूर जाके ऑन आवर फेसबुक पेज कथाकर का फेसबुक पेज योर जलसा रेडियो फेसबुक पेज वी हैव आवर क्यू आर कोड देयर सो डू बुक योर टिकट्स एज सून एज यू कैन एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स अलॉन्ग टू
0: Thank you so much, Prachi. So there we go. We have got the Kathaka team over here giving you full information. Jaise humne shuru mein vaada kiya tha. So thank you so much, Rakesh ji, Nilesh, Monica and Prachi for coming along. I know it's not a very nice day out there. Kafi thand bhi hai, barish bhi ho rahi. But phir bhi, aap logon ne aaya. Thank you so much. And I'm sure this project is going to be successful. Aur bahut hi achha rahega. And I'm looking forward to it personally. Hum milenge. Aur jo log hume sun rahe hain, dekh bhi rahe hain, unko bhi hum shukriya karenge. Alvida kahenge. Aur ye vaada karenge. We'll be back on Saturday again at this time. 5 PM फिर हम मिलेंगे या तो फिर जो छोटे मोटे वीडियो हम बीच बीच में लाते रहते हैं जैसे हमारे पास समय मिलता है या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर बट एक जो हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है आई विल लीव अ सॉन्ग फॉर यू बट जो लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पे है शुभरात्रि एंजॉय योरसेल्फ कीप होम